अंगारे फूल बन गए। ऐथे ही बस नहीं, खंबा तपा के लाल कीता है अग नाल। हुक्म होया हरनाकश दा प्रहलाद नू, इस खंबे नू गलवकड़ी पा।

वाली चीज है, मनुखे दे बारे बड़ा ही अवेसल है, उदे वास्ते कोई तैयारी नहीं। जिन्हां नूं मरना आया, कबीर जी उन्हां दी गल करदे ने, सहजै मरे अमर होए से। कुछ लोग ऐसे होंदे ने शरीर करके मर के भी नहीं मरदे, उन्हां दा जीवन अनंत है, चलता ही रहिंदा है, क्योंकि अनंत विच वाहिगुरु विच अभेद हो जांदे ने। उन्हां वास्ते मरना कादा माड़ा है। महाराज धन गुरु नानक पातशाह वचन करदे ने ना।

तेरी ये जवानी को मिला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

जे पूछिए पाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है, टिकया उठ पवेगा रोन की केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ए भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान कर

पर है तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपन वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई।

अमृत, अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नू पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तीन हिस्से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वड्डा एक वारी देवतिया ने विचार कीती देखिए ता सही एडा वड्डा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड्डे समुंदर विचों चीजा लभनियां ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है

समुंदर नूं रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी, रस्सा चाहीदा, पर समुंदर अथाह है। एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी। तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नूं मदानी बनाया, शेष नाग नूं रस्सा बनाया। शेष नाग नूं उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया। एक पासिओं उस सप नूं देवतिया ने फड़िया, एक पासिओं दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंद्र आदिक देवते ने, दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले। एक वारी सप नूं शेष नाग नूं देवत्या ने अपने वल खिचिया, एक वारी दैंता ने सप नूं शेष नाग नूं अपने वल खिचिया, ते ओह जिहड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ। ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया। जहर बड़ा खतरनाक सी, धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे। ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई। ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता। उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया, उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया। इस करके शिवजी भगवान नूं लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे। जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ, पारजात दरखत, लक्ष्मी। अनेकां वस्तुआं निकलियां, लक्ष्मी नूं विष्णु भगवान जी ने अपना लिया। पारजात दरखत नूं इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया। जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया, पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

लावते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े होए कोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने क्या बचियो कोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां इस तरह दे कोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नूं भी दरख्त दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नूं आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शिद हो गए। ता उस वक्त सीता जी नूं पता लगा। उन आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हन। उदों पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही नहीं जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया है उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नूं सुरत विच लियांदा। जिहड़ा अमृत बचिया जगह पुट के उस नूं दब दिता गया। त्रेते विच इह अमृत इस तरह प्राप्त कीता ते लिखिया है कि जिस जगह ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगह प्रगट हुई। इस जगह धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगह नूं अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद कीता जांदा है।

द्वापर युग आया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दें, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, आज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है, देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी वो कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले ए शब्द उचारिया।

एक गुफा च बह जा, करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा पर

रात दही के बाद हुक्म होया ऐ नानक दिन ते रात तू मेरा कीर्तन करना है ते दुनिया नू मेरे नाल जोड़ना है।

सोत कंदे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत दोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं देया कहो जिया मैं पंथ चलाव। मैं अपना सुत तो ही निवाजा पंथ प्रचुर कर बेको साजा। अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती गुरु साहिबां दी अखां बंद ने अखां दे सामने एक सूरत आई लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां चौड़ी छाती मत्था चमकदा अखां विच नाम दी लाली बोल फरकदे ने सोहना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ कड़ा गात्रे कृपान तेड़ कछहरा। सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने ऐ सूरत तू कौन है। उस सूरत बोली मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने तू कित्थों आई है। उस सूरत बोली मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हाँ मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए पर सोचन लगे ये सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया मसंदा पंडता साधुआ सन्यासिया किन्नू दया ये सूरत क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नूं चंगी तरह साफ करके ले जाने हैं। जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना ते साफ चाहिदा है।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है। जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है। अखां बंद नहीं, हाथ जोड़े हुए नहीं, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह, मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उस सिख उठिया, अखां पूंजदा होया, पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ये काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार, कहन लगा, ये दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, उहदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू उहदा हुक्म होया। ये सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरणा ते रख दिता। ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आया, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसे चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिहदे विच हीरे जड़े होए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों ओह काबल गया सी। दूसरा कंगन जिहदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओह कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਐ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਗਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਨ ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

पंडितों की प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते साहबा ने कहा जिहड़ा मास वाला लंगर छकेगा उन्नू बहुत ही माया मिलेगी, जिहड़ा सादा लंगर छकेगा उन्नू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ते सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी, कीर्तन हो रहे, बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु साहब जी विराजमान ने। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चेहरे का रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई। म्यान विच कृपान खिंची ते ललकार के कहा, साध संगत मैनू एक सिर की लोड़, पहला तां किसे नूं समझ ही ना आई। जदों दोबारा कहा मैनू एक सिर की लोड़ है, हर पासे सहम छा गया कि ये की हो गया। गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी बारी

तेरी ये जवानी को मिला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

जे पूछिए भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंग है, टिकया उठ पवेगा रोन की केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है, फिर क्यों ना

ऐसा पुल है। भाई साहब कहने ने एक बारी नहीं पांच बारी गंगा चला जा, पांच पांच बारी प्रयागराज रा के त्रिवेणी दे इशनान करे, एक सिख नु इशनान करा देवे, एक सिख नु नहाउण वास्ते इशनान वास्ते पानी भर के दे देवे, ओदे इशनान दा प्रबंध कर देवे, इन्ना पुल है। कहिंदे ने सिख नु प्यार नाल पानी पियाता, वैसे तां सब नु ही पिआउणा चाहीदा, पर गुरु के सिख नु गुरु शब्द दी विचार वाले नु गुरु प्यार वाले नु आदर सत्कार नाल पानी पिया दिता। समझ लो कुरुखेत्र दी यात्रा होवे, कुरुखेत्र वर्गे महान तीर्थ दी यात्रा होवे, जे कितें सिख नु प्रसादा छका दिता प्यार नाल भाव करके, लंगर छका दिता है ते समेत जग कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत वड्डा पुन हो गया। भाई साहब कहते एक होर वड्डा पुन भी है, एदो भी वड्डा पुन है, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दी, कोई सोने का मकान एक अद्धा बना सकता है, मिट्टी का ही बनाने मसा मसा बनता, एक नहीं सत सत मकान सोने दे कोई बना के दान कर दे, जे कि सिख नु शब्द सिखा दे, शब्द सुना दे, शब्द के लड़ ला दे, उदो वड्डा पुन। सत सत सोने दे मकान बना के दान करन नालो एक सिख नु शब्द सिखा दे, गुरु के शब्द दे लड़ ला दे। एक होर गल कहने साधा दे दर्शन करन वास्ते, महात्मावां दे दर्शन करन वास्ते, पुन्न आत्मा दे दर्शन करन वास्ते लोग तीर्थां ते भटकदे ने, पर भी वारी किसे साधु दे दर्शन करन जाना एक पासे ते किसे गुरसिख नु मुठियां भर के सुआ देना एक पासे, इस छोटे जतन नाल वड्डा फल। बहुत वड्डा महात्मा है, गुरु के सिख दी खुशी गुरु की खुशी है। और एक बार ऐसा होया सी, भाई सत्ता बलवंत कीर्तन करके हटे सन, उठे ते अगों बाबा बुढ़ा जी मिल गया, कहन लगे भाई सत्ता अज मैं पछड़ गया, एक शब्द मैनू भी सुना दे। कहन लगे बाबा इस तरह थोड़ा कीर्तन सुनाया जांदा, उत्थे आके सुनिया कर। बाबा निराश होके जा बैठा, संगत गुरु के बचन सुन लै, साहब गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दे बचन सुन लै। शाम होई कीर्तन करन आउण बैठे, महाराज दूजे पासे मुंह करके बैठ गए, परेशान होए, हाथ बन्ने, महाराज कहन लगे नहीं तुहाडा कीर्तन सुनना, तुसी मेरे सिख नु शब्द नहीं सुनाया, मेरे की लगदे, मेरे सिख दी खुशी नहीं लई, मेरे की लगदे। महाराज सच्चा पातशाह सिख दी खुशी विच आप

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छलो मार्ग गोविंद। ये केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने। ये मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ये रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम का अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम का अमृत समा गया उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु का परिवार नजर आते हैं। जे उदा परिवार है तो एक पिता एक सिखे हम बालक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत च बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नू तू आप ही जानते हैं, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं ते मेरे अवगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुद्र विच पानी है इतने साढ़े विच अवगुण हैं, कृपा कर

क्या करो किच मेर पावो डूब दे पत्थर तारे जोड़ा अगन बराबर तपा पीतर वगे काती प्रणवत नानक होकर।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

तेरी उपमा तोहे बना ले। पटा ने साहब की महान वडियाई की। साहब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह मन नू संबोधन करते ने, जप मन मेरे तू एको नाम। इत्थे मन की अवस्था भी बयान की। कहंदे ने तरह तरह के बड़े सुंदर वस्त्र भी पहने होने इंसान ने, चंगे पाउडर भी लगाए होने इस शरीर नू, पर जे मन मैला है तां साहब कहंदे ने सब कुछ ही मैला।

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिथे सारिया भगतों नू सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहते हे प्रभु ये संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहते ने जदों देवत्या ने समुंदर नू रिड़किया ते 14 रतन कढ़े, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहते ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करते ने, कहते ने हे मालिक

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ किरपा करो सरवण।

अपने पिता दी गोद विचों बड़ी बेरहमी नाल बड़ी बेदर्दी नाल बाहर खिंच लिया। निमाणा जिहा होके पुछदा, हे मां मैनू एक गल का पता नहीं लगा, भाई तू राणी है के गोल।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठ दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड के नहीं जा सकदा। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नूं कोल सदिया, अपने हिरदे नाल ला के
पाई लेने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं और की कहिंदे हैं।

तू मेरे कम लग जा, मैं तेरे कम लग जाना। मैनू तू अपना कम दे दे ते मेरा कम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे के काम आना, जिस काम की जिदी जिनी

संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो कोई तीन कोई दस कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

0: सजूनी से भंगुर प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असी भी उन्हें दर्शन करन आया किथे मिलेंगे?
2: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
2: हाँ बेटी, गुरु अमरदास जी सोलगपुरी जाग राजे ने ता फिर सड पागा च उन्हें दर्शन नहीं। निराश ना हो बेटे, उन्हों का रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
2: हाँ, तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
3: तन गुरु रामदास।
1: किन्नी सोनी थां है, तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान में लानी हूं, नाले पता कर लांगे तुम पिंड किन्नी दूर है। अच्छा
3: छेती आना। तन गुरु रामदास।